दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जना, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

नेपाली को महान पर्व विजय दशमी 2083 साल को पावन अवसर में समस्त नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण रेडियो प्रेमी साथी सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त रायनी राजकला छोरा रविन कुलुङ राई बाबा वीर कुबीर कुलुङ राई आमा सुमित्रा कुलुङ राई भाई नितेश कुलुङ राई बहिनीहरू अर्चना विनिता जयकला शशिकला कुलुङ राई एवं समस्त कुलुङ राई परिवार सिलिचोङ गाउँपालिका एक शिशुवा गोगने संखुवा सभा

0: सम्पूर्ण कपडाहरू पाइन्छ। शम्भू ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, चैनपुर पोखरी बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर शम्भू कटवाल। सम्पर्क नम्बर 98415600।
1: सम्पर्क सञ्जीव कटवाल,
0: सप्लायर्स चैनपुर पोखरी बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर शम्भू कटवाल। सम्पर्क नम्बर 98415600।
1: खरङ सम्पर्क सञ्जीव कटवाल 98165448।
0: जलजला बिहिबारे सम्पर्क मामा होलसेल वस्त्रालय, विनोद पोखरेल। सम्पर्क नम्बर 98400069782।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 PM
3: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 10 PM
2: अहिले रातको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।

को अवसर साथ ही हरेक महीना होने भाग्यशाली उपहार में आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड र मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी र सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दस